चित आवै चित आवन का सदका सर्ब सुख वै जहां जहां खालसा जी साहिबा तहा तहां रचिया रे आयत देख देख फतेह बिरंदगी पैज।

गया कि मैं मिला। सारी रात अरदासां करदा रहा, तरले करदा रहा, मिलदा करदा रहा। साहब जीओ मैनू अखां बख्श दे, मैं तैनू वेख ते लवां मेरा साहब किवें दा। साहब है किवें दा?

मेरे रब का स्वरूप जी, आखो वाहिगुरु। सारी रात अरदासां करता रहा, अमृत वेला होण ते आ गया। इधर गुरु नानक की छेवीं गद्दी, छेवें गुरु नानक, आखो सारे गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी।